0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में सुचेष्टा आप सबके साथ 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक पर। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में आप सबके लिए।

ना दोस्तों, आया मौसम दोस्ती का। जिंदगी भी मौसमों की ही तरह होती है, कभी धूप कभी छांव कभी बरसात तो और कभी बस उम्मीद। लेकिन जो भी हो, हर मौसम में मुस्कुराना जो सीख लेता है उसी के सच्चे जीवन में जो है सच्ची खुशी और चेहरे पर सच्ची रौनक होती है। स्टूडियो की घड़ी 10:11 और मैं शुचिश मिता आप सबके साथ नॉनस्टॉप गपशप में बातें हो रही हैं और बातों के साथ साथ गीत भी, बिल्कुल गीत भी आप सबके लिए बहुत सारे लेकर आई हूँ। और सुनते हैं अगला गीत।

बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर नॉनस्टॉप गपशप

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई।

0: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

में सब साथ चलते हैं, पर जो कठिन राह में मुस्कुराए वही जीवन का असली मुसाफिर कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ खुशियां पूरी हुई, कुछ खुशियां आनी बाकी हैं, कुछ ख्वाहिशें हकीकत बन गई, कुछ अभी बनना बाकी है। बस कुछ पाना, कुछ खोना, कुछ उम्मीद पर ठहरना, यही तो जिंदगी है। इसी में तो वक्त की, समय की, जीवन की खूबसूरती है। कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप, मैं सुचिष्मिता आप सबके साथ 107.9 FM रेनबो दिल से दिल तक पर सुन रहे हैं आप इस कार्यक्रम को। 10:28 स्टूडियो की घड़ी में वक्त। रुक करते हैं अगली गीत की ओर।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर। एक चुटकी नुस्खे,
1: दोस्तों 10:44 स्टूडियो के घड़ी में वक्त, और वक्त है एक चुटकी नुस्खे की। तो सुबह उठकर एक दो ग्लास पानी पीजिए, नींबू डाल के हो, शहद डाल के हो, या वैसे ही गुनगुना पानी हो, पीजिए, जरूरी है। वैसे जो गर्मी अभी है ना, इसमें नारियल पानी या छाछ भी अगर आप दिन भर में पीते हैं तो आपकी दिनचर्या में इसको शामिल करते हैं तो ये आपके सेहत के लिए फायदेमंद ही होगा। वैसे गर्मी कितनी भी हो, सुबह की धूप जो है, एकदम सुबह सुबह की जो धूप है, वो आपके लिए हमेशा फायदेमंद होता है। दिन में 10 मिनट तेज चाल में चले, यानी कि मॉर्निंग वॉक करें, ये जो है आपकी सेहत को अच्छा रखेगा। सुबह सुबह 10-15 मिनट का धूप भी जो है लाभदायक होता है कभी कभी। और जो सबसे जरूरी है आज के समय, वो ये कि अपनी आंखों को थोड़ा आराम दीजिए। हम सब जो है हमेशा किसी ना किसी तरह से जो है स्क्रीन के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे हम अपने वर्क प्लेस में हैं, या फिर अपने घर पे हैं, या फिर कहीं और हैं। हम अपने फ़ोन के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ, अपने लैपटॉप के साथ जो है हमेशा जुड़े रहते हैं, और ऐसे में जो है हमारे आंखों को आराम नहीं मिलता है। तो थोड़ी देर के लिए कोशिश करिए कि थोड़ी थोड़ी देर पे, एक डेढ़ घंटे पे या दो घंटे पे ही थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को थोड़ा सा आराम दे, थोड़ा सा उसे बंद करके शांत करें, फिर दोबारा से अपना काम शुरू करें। ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत लंबे वक्त तक जो है अपने स्क्रीन से दूर रहना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लें। आज के लिए एक चुटकी नुस्खे में बस इतना ही।

चुटकी नुस्खे। थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि मुझे कहना होगा अब आप सबसे टाटा एंड बाय बाय। एक बार फिर सुन रहे थे आप 107.9 FM रेनबो, दिल से दिल तक का कार्यक्रम जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ, और फिर मिलूंगी आपसे इस वादी के साथ, आज लूंगी इजाजत। सुनते रहिए, साथ रहिए।

इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। हम भी दुश्मन तो नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही।

जी हाँ दोस्तों, 107 FM रेनबो पर आपकी दोस्त सविता करती है सभी दोस्तों का स्वागत कार्यक्रम 3 का तड़का में। और पूरे 4 बजे तक हम डिफरेंट तड़कों से ये महफिल सजाने वाले हैं।

0: जी हाँ, ये सच है कि शादी का ख्याल तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे दिल में ये ख्याल जरूर आया है कि गाने सुनने के लिए आपको आना है और मैंने इसीलिए आपको बुलाया है और मैं आ चुकी हूँ स्टूडियो में। जी हाँ, आपकी दोस्त सविता लेकर 3 का तड़का और पूरे 4 बजे तक हम लगाते रहेंगे तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों के तड़के। और क्या क्या खास होगा ये तो आपको रहना होगा हमारे साथ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: जी हाँ दोस्तों, अटूट विश्वास और अनवरत साथ के साथ आपकी दोस्त सविता हाजिर है कार्यक्रम 3 का तड़का में। और हम बात करेंगे आज के दिन की, आज के दिन के सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं।
2: आज के दिन
1: तो आज के दिन खास क्या हुआ ये हमें बताने के लिए हम आपको लेकर आए हैं कुछ ऐतिहासिक तथ्य। जी हाँ, स्कूल में कदम रखते ही जो ऐतिहासिक कहानियाँ होती थी हमारे आकर्षण का केंद्र होती थी। और दोस्तों, सुने हुए किस्से आंखों से देखने और उंगलियों से छूने का जब एहसास पाते हैं तो हमारा दिल और दिमाग रोमांच से भर जाता है। ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्यों को हम साझा करते हैं हर दिन। दोस्तों, 2004 को इस दिन केन फोल्ड नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण पैनल के प्रमुख बने। 2007 जमैका में जन्मी सामुदायिक आयोजक और कार्यकर्ता कॉनी मार्क का निधन हुआ। 2008 में तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने उपचुनाव में करारी हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया। 2008 में इस दिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का डिस्कवरी यान जापानी प्रयोगशाला के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा। 1959 इसी दिन सिंगापुर के एक स्वशासित राज्य घोषित किया गया। 1962 एयर फ्रांस का एक निजी विमान बोइंग 707 पेरिस के ओरली हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और 1994 में इसी दिन भारत सहायता क्लब का नाम बदलकर भारत सहायता मंच रख दिया गया। दोस्तों, इसके अलावा और ख़ास जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनमें है 1943 में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं पुनर्वास प्रशासन की स्थापना हुई। 1947 3 जून ब्रिटिश राज के अधीन भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा कर दी। 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये थे आज के ऐतिहासिक तथ्य जो हमने किए आपके साथ साझा। और भी आज के दिन किन खास लोगों का जन्म हुआ ये भी साझा करेंगे। आज का क्या खास दिन है ये भी आपके साथ साझा करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको सुनवाएंगे जुबिन नौटियाल को।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आज के दिन।
1: जी हाँ दोस्तों, आज के दिन अभी कंटिन्यू है और आज के दिन किन खास व्यक्तियों ने जन्म लिया ये हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। गाना सुनवाने से पहले ही आपके साथ वादा कर दिया था। तो दोस्तों, एक सफल नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार, निबंधकार और आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से एक थे बाल कृष्ण भक्त भट्ट। दोस्तों, जिनका की जन्म हुआ 3 जून 1844 में। भट्ट जी ने निबंधों, उपन्यासों और नाटकों की रचना करके हिंदी को एक सशक्त शैली प्रदान की थी और उन्हें आज की गद्य प्रधान कविताओं का जनक माना जाता है। बाल कृष्ण भट्ट लगभग 32 वर्षों तक हिंदी प्रदीप का संपादन करके अपने विचारों को साकार रूप दिया और उनका जन्म हुआ 1844 3 जून को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, ये थे हमारे महान साहित्यकार जिनका आज के दिन जन्म हुआ। इसके अलावा जी शंकर कुरूप का भी जन्म हुआ 3 जून 1901 को। मलयालम साहित्य के एक भारतीय कवि, निबंधकार और साहित्यिक आलोचक थे। वे सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। दोस्तों, उन्हें 1968 से

1972 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया। पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। वे साहित्य अकादमी पुरस्कार, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार के भी प्राप्तकर्ता थे। उनका जन्म 3 जून 1901 को कोचीन राज्य के नैथोड़े में हुआ था। दोस्तों, आज के दिन एक हमारी प्यारी सी खास अभिनेत्री का भी जन्म हुआ, लेकिन इनको हम इनके बारे में आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि इनका गीत भी आपको सुनवाएंगे, और गीत सुनवाना है तो मुझे वो गीत प्लेलिस्ट में शामिल तो करना है। हाँ, शामिल करके के लेके आई हूँ, लेकिन इससे पहले आज के दिन कौन सा खास दिन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, आज है राष्ट्रीय चॉकलेट मैक्रून दिवस। संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया जाता है यह दिवस मीठे का आनंद लेने के लिए। तो मिठाई प्रेमियों के लिए ये एक अच्छा दिन है। आप चाहिए तो एक चॉकलेट खरीद कर खा सकते हैं। इसके अलावा एक और खास दिवस है, और ये दिवस तो बहुत महत्व वाला है। जी हाँ, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइकिल की विशिष्टता, स्थायित्व और बहुमुखी प्रतिभा को मान्यता देने के लिए 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस घोषित किया है, जो कि किफ़ायती, पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ परिवहन का साधन है। और दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि एक जरूरी और बहुत ही एक स्वास्थ्यवर्धक आपके वाहन के रूप में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज के समय में जबकि विश्व भर में जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, तेल की खपत की समस्या उपस्थित होती जा रही है, ऐसे में हम यदि ऊर्जा और तेल को बचाना चाहते हैं तो साइकिल का सहारा ले ही सकते हैं। साइकिल को अपनी दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी दूर या थोड़ी सी मध्यम दूरी तक तो हम साइकिल पर जाकर अपने काम को करके आ सकते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। तो आइए, बातें तो बहुत हो गई, अब आपको एक गीत सुनवा देते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे को साइकिल दिवस पर याद आया एक गीत, वो जो कि सलमान खान ने साइकिल पर ही चलाते चलाते ये गीत गाया है, और बड़ा ही सुंदर ये गीत लगा। इसका पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा है, तो क्यों ना वही गीत सुनवा दूँ। हालांकि शाम धीरे धीरे हो ही रही है, तो ये गीत सुनना बनता है।

लेकिन दोस्तों आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं तो यही हूँ और ये कहने वाली भी नहीं हूँ कि आप चलिए और हम आपको गाना सुना रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, बस इतनी सी बात है।

एक बार फिर से स्वागत है अभिनंदन है और आपके साथ है आपकी दोस्त सविता। और आज हम बात कर रहे हैं कि आज है किसी का जन्मदिन। जी हाँ, हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय के लिए जाने जाने वाली वाली एक प्रशंसित भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें अनेक पुरस्कार मिले और उन्होंने फिल्म उद्योग में जो योगदान दिया उसे सराहा जा सकता है। बात किसकी कर रही हूँ, बात कर रही हूँ चाइल्ड एक्टर के तौर पर बनाई उन्होंने पहचान, जी सारिका। सारिका ने बाल कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई और लड़के के कई किरदार उन्होंने निभाए। बड़े होने के बाद सारिका ने मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया। गीत गाता चल से उन्हें खास पहचान मिली। उसके बाद आशीर्वाद, छोटी बहू, वंदना, गृह प्रवेश, खुशबू जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। अपनी सादगी के लिए वो जानी जाती हैं और फिल्मी दुनिया में अभिनेत्री सारिका ने बचपन में ही जिम्मेदारियों का बोझ संभालते हुए उस स्थान तक पहुंचाया जहां पर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार तक मिला। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम अभिनेत्री सारिका की, तो उन्हीं की फिल्म गीत गाता चल का पहले ये गीत सुनवाएंगे, उसके बाद तीन का तड़का में और भी तड़का लगाएंगे।

जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और करीब हमारे 37 मिनट गुजर चुके हैं। दोस्तों वक्त हो चला है परियोजना प्रस्तुति का। आपके समक्ष हम भारत सरकार द्वारा जो लागू की जा रही हैं योजनाएं, उनकी परियोजना प्रस्तुति करते हैं। और इस बार हम पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा महिलाओं के लिए राज्य की सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा योजना लागू कर दी है उन्होंने, तो इस बारे में आपके साथ हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इस पर प्रकाश डालेंगे। बिल्कुल दोस्तों, इस योजना के तहत राज्य की महिलाएं सरकारी बसों में बिना किसी किराए के जीरो वैल्यू टिकट प्राप्त करके सफ़र कर सकती हैं। इस योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं, वह योजना पूरे पश्चिम बंगाल में लागू हो चुकी है और किराया महिलाओं के लिए बस का शून्य होगा और उन्हें एक शून्य मूल्य का टिकट दिया जाएगा। दोस्तों महिलाओं के दैनिक सफ़र को सस्ता और आसान बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, यही उद्देश्य है हमारी राज्य सरकार का। और इस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड की अनुपलब्धता के बावजूद महिलाओं को मुफ्त टिकट प्राप्त करने के लिए बस कंडक्टर को कोई एक वैध पहचान दस्तावेज दिखा दें ताकि आप आराम से सफ़र कर सकें। और इसके लिए जो जो दस्तावेज मान्य हैं, यानी जो बस कंडक्टर है आपके पास कोई भी दस्तावेज देखेंगे तो उनमें से कोई एक आप दिखा सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयुष्मान भारत कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज जिसमें फ़ोटो, केंद्रीय राज्य सरकार का कर्मचारी का पहचान पत्र, स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय का छात्र का पहचान पत्र, राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य कोई भी आधिकारिक पहचान दस्तावेज। और किन बसों में मिलेगी सुविधाएं ये आपको बता देते हैं। यह है मुफ्त यात्रा सुविधा राज्य सरकार द्वारा संचालित सरकारी बसों में लागू है। लंबी दूरी की और सामान्य सरकारी बसों में सफ़र करने वाली महिलाओं को बस में चढ़कर जो हमने बताए 12 दस्तावेज उनमें से कोई एक दिखाना होगा। तो दोस्तों हमने बात की आज मुफ्त बस यात्रा योजना की परियोजना प्रस्तुति में। चले पहले गीत सुनवाते हैं और उसके बाद आपके लिए बॉलीवुड न्यूज़ भी लेके आए हैं, तो थोड़ा सा बॉलीवुड गपशप भी करेंगे, लेकिन पहले गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है 107 FM रेनबो पर तीन का तड़का में। और आइए पहले आपके साथ एक मौसम की सूचना साझा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मौसम की सूचना है कि अगले 2 से 3 घंटों के दौरान ईस्ट मिदनापुर, झारग्राम और पश्चिम मिदनापुर में के कुछ भागों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेंगी और हल्की से मध्यमतर गर्जन और बिजली की चमक के साथ हल्की से मध्यमतर बारिश होने की संभावना है। तो ये मौसम की सूचना थी। सूचना समाप्त हुई और मैं हूँ आपकी दोस्त सविता, लेकर आई हूँ तीन का तड़का। और चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। जी हाँ, कोलकाता कल्चर की ओर।
1: कोलकाता कल्चर।
0: क्या लाए हैं खास कोलकाता कल्चर में दोस्तों? 3 जून को कोलकाता में होने वाली प्रमुख साहित्यिक गतिविधियों में ग्लोबल एग्जीबिशन डे के उपलक्ष में उद्योग और व्यापार साहित्य से जुड़े आयोजनों की श्रृंखला शामिल है। इसके साथ ही आप शहर में साल भर चलने वाले विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकते हैं। तो इनकी जो थीम है एग्जीबिशन की, एग्जीबिशन ड्राइव अपॉर्चुनिटीज़, ये इनकी थीम है। इसके अलावा आने वाले साहित्यिक और सांस्कृतिक उत्सव हैं रंग धूलर नज्म। अगर आपको गज़लें और रविंद्र संगीत पसंद है तो 7 जून को सुजाता सदन हजरा में पोलो जी एक लाइव म्यूजिकल और पोइट्री शो होने जा रहा है। तो ये था कोलकाता कल्चर। इसके अलावा यदि बॉलीवुड न्यूज की बात करें तो बहु प्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्म, जी हाँ, सलमान खान के नाम से तो आप सभी एकदम रोमांटिक हो जाते हैं और आप के चेहरे पर कुछ वो आ जाती है रोशनी टाइप की, है ना।

सलमान खान की फिल्म है भारत, बॉक्स ऑफिस पर भारी कमाई की उम्मीद है और सलमान खान को एक बार फिर से शीर्ष पर पहुंचाने की उम्मीद है। फिल्म के ट्रेलर को समीक्षकों, दर्शकों और प्रशंसकों ने खूब सराहा है। तो सलमान खान फिल्म में 5 अलग अलग अवतारों में नजर आएंगे। इनमें से एक लुक ने कई लोगों को उत्सुक किया है और वो है उनके बूढ़े व्यक्ति का रोल। हाल ही में निर्देशक अली अब्बास जफर ने इंटरव्यू में खुलासा किया है कि 70 वर्षीय सलमान एक्शन करते हुए नजर आएंगे। भारत में उन्होंने सफ़ेद काले बालों वाले लुक के पीछे प्रेरणा का खुलासा करते हुए कहते हैं सुपरस्टार कि दरअसल मेरे सभी कजन्स का लुक एक जैसा है। इंदौर में रहने वाले जो उनके ज़्यादातर कजन्स हैं उनके बाल सफ़ेद काले हैं और उनका सबका लुक एक सा है, तो उन्होंने वैसा ही लुक देने की कोशिश की है। बात थी ये आपकी सलमान खान की और उनकी आने वाली फिल्म की। तो फिलहाल हम एक गीत सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज़ और शोभा जोशी का। ये गीत होप आप काफ़ी दिनों के बाद सुन रहे हैं।

जी हाँ दोस्तों, ये गीत आपने सुना फिल्म हम से मोहम्मद अजीज़ और शोभा जोशी की आवाज़ों में, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और वक्त, बिल्कुल वक्त तो एकदम अपने मुकाम पर आ पहुँचा है।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: जी हाँ दोस्तों, आप अब तो यही कहूँगे कि आप सुन रहे थे तीन का तड़का, क्योंकि अंतिम गीत प्ले करने का वक्त आ चला है। लेकिन जाने से पहले आपसे लेना है वादा, बिल्कुल 7 बजे हम 7:02 पर मिलने वाले हैं छाया लोक में। और छाया लोक में आज किसकी जोड़ी मैं लेकर आई हूँ, मैं सच कह रही हूँ, ये आपसे वादा है कि आज आप बैठे बैठे नाचेंगे और बैठ भी नहीं पाएंगे, खड़े खड़े और अपने दोस्तों को बुला करके नाचने वाले हैं। आज मैं एक ऐसी जोड़ी पेश करने वाली हूँ। इसके साथ ही 5:15 पर चाय एंड क्लासिक्स में आपके साथ मुलाकात होने वाली है FM गोल्ड पर। जी हाँ, FM गोल्ड खरासाना पर आपकी दोस्त सविता मिलेगी। तो बस मुझे भी थोड़ी सी चाय पीनी है, तो थोड़ा सा चाय पीकर आती हूँ, थोड़ी सी एनर्जी लेकर आती हूँ, फिर बैक टू बैक आपके साथ हम रहेंगे कार्यक्रम छायालोक में और चाय एंड क्लासिक्स में। इसके साथ तीन का तड़का तो फिलहाल खत्म होने वाला है, तो अगली बार कब मिलूंगी तीन का तड़का मैं बता दूं। बिल्कुल दोस्तों, बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ। 5 तारीख को आपकी दोस्त सविता फिर से तीन का तड़का में हाजिर होगी। तो फिलहाल हो चुके हैं 3:55 और 32 सेकेंड। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और जिंदगी में कभी भी दुखी बिल्कुल और निराश एकदम नहीं होना, जिंदगी का यही तो फलसफा है। और चलते चलते आपके लिए फिल्म राज 3 का के की आवाज़ में ये गीत, 107 FM रेनबो पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम तीन का तड़का।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, जी हाँ 107 एफएम रेनबो पर आपकी दोस्त सविता हाजिर है। बिल्कुल करके गई थी वादा की 3 तारीख को मैं आऊँगी, जी आ गई। और क्या लेकर आई हूँ और किसकी बातें आज करने वाले हैं, और ये तो आप सब जानते हैं कि छाया लोक है शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, और आज है बुधवार, तो बुधवार को क्या ख़ास है ये तो हम बताएंगे। पहले सुनवाएंगे एक गीत, लेकिन इससे पहले

जी हाँ दोस्तों, आने वालों का इस्तकबाल कैसे किया जाए। मन में बार बार ऐसा ही विचार आता है कि जो आने वाला है उसे हम किस तरह से उसका स्वागत करें, किस तरह से उसका अभिनंदन करें और कैसे कार्यक्रम का आगाज करें। मन में बार बार ऐसे ही विचार आते हैं, तो बस हम तो स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। छाया लोक कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त सविता, साथ साथ में हम साथ साथ हैं बिल्कुल। और ये गीत जो आपने सुना बप्पी लहरी की आवाज़ में, दिल में हो तुम आँखों में तुम, कहो कैसे तुम्हें चाहूं, तो बिल्कुल मेरे मन में भी यही विचार आ रहा है कि आपको आप अपने जज्बात कैसे दिखाऊं। दोस्तों ये सारी बातें हम आपसे करेंगे पूरे 2 घंटे कि आपके साथ क्या बातें करनी है। लेकिन फिलहाल आप एक आइडिया कर रहे होंगे कि क्या आज मैं बप्पी लहरी दा के बारे में बात करने वाली हूँ या फिर कुछ और। तो है ना कुछ और, बस इंतज़ार करिए और एक और गीत सुनिए और उसके बाद हम ये राज खोलने वाले हैं कि आज हम साथ साथ में कौन है हमारे साथ।

जी हाँ, क्या हम उषा उद्धव जी के बारे में बात कर रहे हैं? तो दोस्तों, क्यों ना हम आज साथ साथ में दोनों की साथ साथ बात कर लें। बिल्कुल दोस्तों, बप्पी लहरी और उषा उद्धव, ये अमर डिस्को जोड़ी। यूं तो संगीत जो है आत्मा की भाषा होती है, और अगर बात की जाए कि ये भाषा रोमांचकारी और रोमांस में बदल जाती है, तो वो हैं बप्पी लहरी। जी हाँ, उनका संगीत में संसार जो बड़ा ही अनोखा है। बप्पी लहरी की संगीत शैली को हमेशा ताल की तीव्रता और जीवन की बारीकियों के साथ उसको उन्होंने गीतों में ढाला है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम बप्पी लहरी के साथ उषा उद्धव जी को ले, और उन्होंने इस संगीत

सुरमय संसार में बहुत सारे अनोखे गीत दिए हैं, तो बात आज हम करेंगे बपीदा और उषा उत्थप की। लेकिन फिलहाल जो एक गीत सुनवाएंगे वो है आशा भोसले, बप्पी लहरी और शशि कपूर की आवाज़।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: Akashwani at 90.
1: जी हाँ दोस्तों, छाया लोक में एक बार फिर से स्वागत करती है आपकी दोस्त सविता। और आज हम साथ साथ में हम बात करने वाले हैं बप्पी लहरी और उषा उत्थप की अमर जोड़ी की। 107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं हम साथ साथ हैं। दोस्तों 19 साल की उम्र में ही बप्पी लहरी ने बंगाली सिनेमा के साथ संगीत की दुनिया में कदम रखा और बाद में उन्होंने 1973 में मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में प्रवेश किया और बप्पी लहरी हो गए मशहूर। संतुलित बेसलाइन, आधुनिक लय और वाद्य यंत्रों से भरपूर संगीत उनके जीवन, उनके संगीत की शैली रही। एक और उन्होंने जहाँ पर दिग्गज किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले के साथ काम किया, वहीं उन्होंने विजय बेनेडिक्ट, शेरोन प्रभाकर, अनुपमा देशपांडे जैसे गायकों को भी अवसर दिया।

उनके द्वारा अपनी आवाज़ की शैली में गाए जो गीत है वो भी एक अलग पहचान रखते हैं। तो बात कर रहे हैं हम बप्पी लहरी और उषा उत्थप की। आप भी यदि कुछ खास साझा करना चाहते हैं तो मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ सकते हैं 2213-1341। एक और बार बता देते हैं फ़ोन नंबर, जी हाँ 2213-1341 पर, और अपनी बातें खास क्या आप कहना चाहते हैं बप्पी लहरी और उषा उत्थप के बारे में, या उनका कौन सा वो गीत है जो आप सुनना चाहते हैं, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी सुनवाने की।

0: कहो। जी हाँ, ये जो तीन शब्द हैं, भला कौन नहीं सुनना चाहता, आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर किसी ना किसी वक्त जरूर दिली ये ख्वाहिश रही होगी कि कोई मुझसे कहे एक बार तीन शब्द। चलिए, ये तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं छोड़कर, आपके रोमांटिक दिल को आपके पास ही छोड़कर बढ़ते हैं आगे बप्पी लहरी और उषा उत्थप की अमर डिस्को जोड़ी। बात हम कर रहे हैं और आप भी चाहें तो अपने दिल की बात कुछ कहना चाहें उषा उत्थप, बप्पी दा या इनकी अमर जोड़ी के बारे में, उनके गीतों के बारे में, तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ 2213-1341 पर। और एक मेरे साथ दोस्त जुड़ चुके हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो हेलो, वो जुड़े। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ आपका नाम बताइए।
1: हेलो, गुड इवनिंग जी, मैं जीतू बोल रहा हूँ इस तरह से।
0: जीतू जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: जी बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और चल रहा है बस। तो क्या कहना चाहते हैं आप?
1: और आज जो आपका प्रोग्राम हो रहा है जी, बहुत ही अच्छा हो रहा है और बेस्ट जोड़ी लेकर आई है आप आज
0: जी,
1: और उत्सव सब जी।
0: बिल्कुल,
1: तो एक नहीं रहे हम लोगों के साथ और एक उत्सव सब जी तो है हम लोग के साथ
0: जी।
1: तो मैं चाहूंगा कि यूं ही जो है गाने का सिलसिला चलता रहे, उत्सव जी का नए नए ऐसे गाना आते रहे। और पहले का जो गाना होता था बप्पी लहरी और उत्सव जी का, बहुत ही अच्छा होता था, बेस्ट होता था। बहुत सारे गाने हैं हमको अच्छे लगे, उत्सव जी का एक गाना है,
0: कौन सा?
1: उड़ी बाबा एक तो,
0: हाँ वो मेरे पास है, लिस्ट में है और मैं जरूर सुन पाऊंगी।
1: और जैसे कि आप बातें कर रही है दोनों जोड़ी के बारे में, तो वैसे तो सभी गाने हमको अच्छे लगते हैं। बप्पी लहरी का एक गाना है जो सबसे फेमस गाना है, मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर फरमाया गया था वो गीत को, आई एम ए डिस्को डांसर, वो भी गीत बहुत ही अच्छा लगता है हमको।
0: उसमें डिस्को डांसर में एक उषा उत्थप और बप्पी लहरी ने गाया है अउआ उआ।
1: जी बिल्कुल, यहाँ वो अउआ उआ जो गाना है
0: बिल्कुल,
1: वो बहुत ही अच्छा लगता है हमको।
0: हाँ, तो
1: उस गाने को कभी कभी हम गुनगुना भी लेते हैं और गाने का जो है ना इच्छा, मतलब जब भी गाने को हम सुनते हैं तो लगता है कि ये गाने को मैं गाऊंगा।
0: अच्छा, चलिए,
1: कोई ट्रैक जैसे कुछ ट्रैक म्यूजिक से बजा लेते हैं और तो मैं मतलब कोशिश करता हूँ गाने का।
0: अच्छा, तो जीतू जी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी बिल्कुल जी, थैंक यू जी,
0: थैंक यू। जीतू जी ने तो अपने दिल की बात कह दी है और मैं भी दिल की बात की इतनी ही कहूँगी। फिलहाल उषा उत्थप की आवाज़ में मैं एक गीत सुनवाने वाली हूँ और उसके बाद बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो बप्पी लहरी और उषा उत्थप जी ने संग संग गाए हैं, मैं वो गीत चुन कर लाई हूँ। तो आइए पहले तो ये गीत सुन लेते हैं और आई एम श्योर आप उठकर खड़े होकर नाचने लग जाएंगे।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, छायालोक में एक बार फिर से स्वागत करती है आपकी दोस्त। और बॉलीवुड म्यूजिक की दुनिया में जब भी दमदार आवाज और स्टाइल की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है उषा उत्थप का। दोस्तों, उनके गाने लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं और उषा की अपनी दमदार आवाज़ के साथ कांजीवरम की साड़ी और बड़ी गोल बिंदी और बालों में फूलों के गजरे, इसके लिए वो जानी जाती हैं। एक अलग ही उनका स्टाइल है और एक ही ट्रेंड उन्होंने सेट किया है। बातें हम और भी करेंगे और लेकिन पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक दोस्त, तो देखिए वो क्या कहते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग सविता पोद्दार मैडम।
1: जी वेरी वेरी गुड इवनिंग, आप कौन बोल रहे हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए।
2: जी मैं मोहम्मद नासिर, दरभंगा बिहार से। मैम
1: मोहम्मद नासिर दरभंगा से, जी आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: जी थैंक यू वेरी मच मैम।
1: बताइए कैसे हैं?
2: बहुत अच्छे हैं मैम, बस आप लोग का दुआ है, आशीर्वाद है, ऊपर वाले का क्रम है। बहुत अच्छे हैं। आज आपने बहुत एक अच्छे ही म्यूजिक डायरेक्टर का आपने प्रोग्राम लेकर के आया है, उषा उत्थप जी का प्रोग्राम लेकर के आया है।
1: जी
2: तो मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि बप्पी लहरीदा का म्यूजिक और उषा उत्थप के गाने इस तरीके के होते हैं कि जो नहीं भी चाहे डांस करना या कोशिश नहीं भी करे वो हिलना, तो उनके पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं और हाथ खुद ब खुद थिरकने लगते हैं और बॉडी जो है मूवमेंट करने लगते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: जी जी जी, तो अभी इससे पहले जो अभी आपने गाना सुनाया नाकाबंदी का, वो भी गाने बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छे गाने थे। और अक्सर मैं इस गानों को डांस के मोमेंट में, जब भी कभी कोई डांस का प्रोग्राम या कोई फेस्टिवल या किसी तरह का प्रोग्राम होता है, तो मैं अक्सर इस गाने को सुनने में देखा जाता है, जिस पर लोग खूब झूमते हैं, खूब डांस करते हैं।
1: बिल्कुल, आपने पूजा वगैरह में भी देखा होगा कि ये गाने बजते हैं।
2: जी बजते हैं। मुझे याद है अभी भी कि एक प्रोग्राम आपकी अदालत में हुआ था जिसमें हमारे बप्पीदा को वहाँ बुलाया गया था और उसमें सवाल किया गया था बप्पीदा से, कहा गया था कि सर आप पर एक ब्लेम है कि आप संगीत चुराते हैं। तो उनसे उन्होंने हंसते हुए कहा था कि एक्चुअली में ये डिस्को म्यूजिक जो है ये इंडिया का म्यूजिक नहीं है और ये विदेश का म्यूजिक है जो इंडिया में लेकर के आया गया। और जब से बप्पी दा का म्यूजिक इंडिया में आया तब से लोगों ने थरकना सीख लिया, लोगों ने डांस करना सीख लिया। मैम
1: सही बात है, बिल्कुल डिस्को डांसर फिल्म से उन्होंने डिस्को को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया।
2: जी जी जी जी जी,
1: तो बप्पी दा को ये श्रेय जाता है।
2: जी जी बिल्कुल, मैं बप्पी दा को ये श्रेय देता हूँ कि उन्होंने हम इंडियन को थिरकना

0: सिखाया, उनके म्यूजिक पर डांस करना सिखाया और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग दिए। 30,000 से भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि उन्होंने म्यूजिक दिए हैं गाने में, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ मैम।
1: जी शुक्रिया नासिर जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए, और आप बिहार दरभंगा से जुड़े हैं तो हमारे श्रोता हमें वहाँ तक सुन रहे हैं, ये जानकर भी हमें बड़ी खुशी होती है।
0: जी मैम,
1: और हमारा प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन
0: बहुत अच्छा मैं रोजाना इसे मिस नहीं करता।
1: जी जी जी, बहुत शुक्रिया। तो चलिए मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगी, कार्यक्रम में आगे बढ़ूंगी। तो दोस्तों हमारे साथ नासिर साहब जुड़े और उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी कही कि बप्पी दा ने डिस्को को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, और उनके गाने ऐसे हैं बप्पी दा के, भले ही उन्होंने गाए हो या फिर किसी और सिंगर से गवाया हो, वो आदमी पैर और हाथ उसके चलने लगेंगे खुद ब खुद। और मैंने डायरेक्ट एक शो में देखा था उषा उत्थप जी को गाना गाते हुए, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो साड़ी पहने हुए हैं, बिंदी लगाए हैं, गजरा लगाए हैं, बैंगल्स पहने हुए हैं, और वो पैर के दर्द के कारण उठकर खड़ी नहीं हो पा रही थी, उन्होंने बैठ कर के चेयर पर गाना गाया, और चेयर पर बैठे बैठे उन्होंने वहाँ जितनी पब्लिक थी उनको उन्होंने नचा दिया। इतनी ताकत है उनकी आवाज़ में जो बहुत कम देखी जाती है।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक हम साथ साथ।
1: जी हाँ दोस्तों, हम साथ साथ में एक बार फिर साथ साथ हो लिए हैं। और उषा उत्थप की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 1947 में मुंबई के एक तमिल परिवार में। उनके पिता बैद्यनाथ सोमेश्वर सामी पुलिस विभाग में कार्यरत थे, और जिसकी वजह से उनका परिवार काफ़ी डिसिप्लिन्ड था। जी अनुशासित था, और उनका लगाव बचपन से ही संगीत से था। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उन्होंने संगीत की कहीं ट्रेनिंग नहीं ली। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बल्कि स्कूल में बचपन में जब उन्होंने एक कोरस में गाना गाया तो म्यूज़िक टीचर ने उनकी भारी आवाज़ के कारण उन्हें निकाल दिया था, लेकिन यही आवाज़ उनके कैरियर में बड़ी ताकत बन गई। तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कारण कहीं से आप फेल हो जाते हैं या सफलता आपके हाथ लगती है, तो कई बार होता है कि वही चीज़ आपकी ताकत बन जाती है। दोस्तों 2213-1341 पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बप्पी लहरी और उषा उत्थप की अमर जोड़ी के बारे में, डिस्को जोड़ी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, या फिर बप्पी दा के बारे में, उषा दी के बारे में आप बोलना चाहते हैं तो कह सकते हैं। यदि उनका कोई ऐसा गीत है जो आपको लगता है कि मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं सुनवा दूँ, तो कोशिश करूँगी कि वो ज़रूर सुनवाऊँ। तो फिलहाल मैं सुनवाऊँगी उनका वो गीत बप्पी लहरी और उषा उत्थप का, जहाँ डिस्को डांसर फिल्म से बप्पी दा ने इंडिया में इसको करवाया था इंट्रोड्यूस।

दोस्तों, एक न्यूज़ ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं और आपको सुनवाया हमने गाना फिल्म डिस्को डांसर से, और बात कर रहे हैं बप्पी लहरी और उषा उत्थप जी की। उषा उत्थप जी का करियर शानदार रहा और बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनका कितना बड़ा संघर्ष रहा है। उन्होंने नाइट क्लब से अपना गाना शुरू किया। उनकी मेहनत और उनकी अनोखी शैली ने ही उन्हें जल्दी इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। और आप जानते हैं कि उनको सबसे पहले गाने का ब्रेक किसने दिया, तो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आपको सुनवाऊंगी ये गीत। और इससे पहले बात हम करेंगे बप्पी लहरी की, जो कि एक संगीतकार, संगीत निर्देशक, निर्माता और कलाकार हैं। तबला, ड्रम, पियानो, सैक्सोफोन बजाने में निपुण हैं। संगीत निर्देशक के रूप में उनकी दक्षता के लिए उन्हें 1986 से 33 फिल्मों के लिए और 180 गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड बनाने में उन्होंने खुद को सक्षम बनाया। जी हाँ, बप्पी लहरी ने शुरुआत कैसे की थी और कैसे उनकी प्रतिभा को उनके टीचर ने पहचान लिया, ये सब बातें भी करने वाले हैं और कुछ खास किस्से आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन पहले आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत उषा उत्थप की आवाज़ में। सुनते हैं ये गीत। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 2213134 पर।

दोस्तों, भारतीय पॉप संगीत के इस कलाकार का जो संगीत में सफ़र था तब शुरू हुआ जब स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल की बेंच पर ढोल

करते हुए देखा और उनकी प्रतिभा को पहली ही बार में पहचान गए कि ये संगीतकार बनने वाले हैं। वैसे ये गीत जो अभी अभी आपने सुना है रंबा हो, इस गीत के बारे में भी कहीं मैंने इंटरव्यू में उनके सुना और पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि वो एक बार अपनी छत पर खड़े हुए थे और कहीं कोई दूर पर मजदूर कुछ इमारत में काम कर रहे थे, तो वहाँ पर उनके एक हथौड़े से वो कुछ कूट रहे थे और उसकी आवाज़ से जो आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ से इंस्पायर होकर उन्होंने इस गीत की रचना की थी। तो इस तरह से इतने टैलेंटेड थे हमारे बप्पीदा। और ठीक बचपन में इसी तरह से उनको उनके प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल में बेंच पर ढोल बजाते हुए देखा और उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था। फिल्म डिस्को डांसर और उसके साउंड ट्रैक की रातों रात मिली जबरदस्त सफलता ने भारतीय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था और नवोदित संगीत निर्देशक बप्पी लहरी की डिस्को किंग के रूप में स्थापना हो गई थी। अगले दशकों में इस संगीत में प्रतिभा ने भारतीय जो संगीत की दुनिया थी उसको पूरा झकझोर कर रख दिया और एक अनूठे युग की शुरुआत उनने कर दी थी। बप्पी लहरी की जहां हम बात कर रहे हैं वहीं पर हम उषा उत्थप जी की भी बात कर रहे थे और गाना सुनवाने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि बताऊंगी कि इंडस्ट्री में तो उन्होंने अपनी मेहनत से पहचान बनाई, उनकी एक अनोखी शैली है उषा उत्थप की और उस शैली ने उन्हें उनकी जगह बनाई। लेकिन बॉम्बे टाकीज में गाने के लिए मौका दिया हमारे कलाकार अभिनेता देवानंद ने, वहीं पर शंकर जयकिशन के साथ उषा उत्थप ने इंग्लिश गाना गाया और बस उसके बाद तो लगातार फिल्मों में गाने के ऑफर उनको मिलते चले गए। उषा उत्थप ने आरडी बर्मन, बप्पी लहरी, एआर रहमान जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। दम मारो दम, 1-2, चा चा चा और हरे रामा हरे कृष्णा, महबूबा जैसे गानों से को अपनी आवाज़ दी। बप्पी लहरी के साथ उनका जो साथ है वो तो एक इतिहास है। बातें और भी करने वाले हैं और उनके गीत सुनाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मेरा दिल कर रहा है कि मैं उनका ये गीत सुनूं, खुद सुनूं नहीं सुनवाऊं भी।

0: ആകാശവാണി അറ്റ് 90.
1: जी हाँ दोस्तों, 107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक, ये आकाशवाणी है। वक्त हो चला है 8:22, मैं हूँ सविता और बात कर रहे हैं बप्पी लहरी और उषा उत्थव की अमर डिस्को जोड़ी पर। कई फिल्मों में ऐसा भी है कि जहाँ बप्पी दा संगीत निर्देशक हैं और उषा उत्थव गायिका। दोस्तों, बप्पी लहरी की जैजी पॉप पर मजबूत पकड़ और उषा उत्थव की विशिष्ट भारी आवाज़ ने भारतीय फिल्म उद्योग को रंबा हो, अउआ उआ, उरी बाबा उरी और हरी ओम हरी जैसे सुपरहिट जोशीले थिरकने वाले गाने दिए। 1980 में आई फिल्म प्यारा दुश्मन और उसका वो गीत याद आया आपको, और साथ में उनका एक बैंड, कहते हैं कि ये वन वे टिकट से लिया गया था।

1980 में जो फिल्म आई प्यारा दुश्मन, जिसका जो गीत मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, ये इरप्शन बैंड के वन वे टिकट से लिया गया था। डिस्को डांसर का गीत कहते हैं अउआ अउआ, बंगल्स बैंड था, उससे उसके वीडियो किल्ड द रेडियो स्टार का रीमेक था। और घायल 1990 का जो गीत था सोचना क्या, फ्रेंच ब्राजीलियन बैंड का।

ओमा के सुपरहिट गीत लंबाडा का बॉलीवुड संस्करण था। तो कुछ इस तरह से बप्पी दा ने अपने तरीके से कुछ गीतों को पेश किया था। तो बात जब चली है प्यारा दुश्मन फिल्म की, तो बप्पी दा संगीतबद्ध किया इस गीत को, और गायिका हैं उषा उत्तम।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला।
1: छायालोक में एक बार फिर से हम आ गए हैं और गाने तो सुन ही रहे हैं, कुछ कुछ बातें कर रहे हैं बप्पी दा के बारे में और उषा उत्थप के बारे में, जिनकी अपनी एक नई शैली थी, एक उनकी दमदार आवाज़ थी और उधर बप्पी दा उनका अपना एक अलग स्टाइल था और उन्होंने अपने को खुद एक नई पहचान के साथ स्थापित किया था बॉलीवुड की दुनिया में। दोस्तों, 70 के दशक का शुरुआती समय था। हिंदी फिल्म संगीत पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी वर्मन, कल्याण जी आनंद जी और रविंद्र जैन जैसे संगीत निर्देशकों का दबदबा था। उसे ठीक पहले खय्याम साहब की फिल्म कभी कभी हिट हुई थी और राजेश रोशन का गाना जूली रेडियो पर खूब बज रहा था। दोनों संगीतकारों की खूब मांग थी और ऐसे में बप्पी को अपनी एक अलग पहचान बनानी थी और उन्होंने कुछ अलग हटकर करना था। विदेशों में लोग निर्माता जॉर्जियो मोरोडर और सैरोन गायिका डोना समर और बी गिस के गाने खूब सुन रहे थे और भारत में विद्दू, जी हाँ, उनका डिस्को हिट सॉन्ग चल रहा था, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, पाकिस्तानी गायिका नाजिया हसन की आवाज़ में फिल्म कुर्बानी का खूब गाया जा रहा था। तो इससे साफ पता चल रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक संगीत और डिस्को का बोलबाला हो गया था और बस यही समय था, यही मौका था और यही अवसर था जब बप्पी दा ने इसका फ़ायदा उठाया और उषा उत्थप के साथ वारदात फिल्म में उन्होंने गाना गाया प्यारा दुश्मन में, जो अभी हमने सुनवाया हरिओम हरी, और इससे पहले अरमान में शैरोन प्रभाकर के साथ खुद उन्होंने गाना गाया मेरे जैसी हसीना का दिल, हथकड़ी में आशा भोसले के साथ डिस्को स्टेशन और डिस्को डांसर में भारी सफलता की, उसके बाद पैदा कसम कसम पैदा करने वाले में फिल्म में उन्होंने सलमा आगा के साथ, झूम झूम झूम बाबा साहेब में एस जानकी के साथ यार बिना चैन कहारे और डांस डांस में अलीशा चिनाए के साथ उन्होंने गाने गाए, एक के बाद एक सुपरहिट वो सॉन्ग्स देते चले गए। बात उनकी बहुत है, ढेर सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल मैं वो गीत सुनवाना चाहूँगी जो उनका सुपर डुपर हिट हुआ था फिल्म वारदात का, मिथुन चक्रवर्ती और जी हाँ नाम मैं भूल रही हूँ, बताने वाली हूँ, लेकिन पहले आपको गाना सुनवा दूँ। फिल्म वारदात में उषा उत्थप और बप्पी लहरी ने जो गीत गाया वो उस समय के बहुत अधिक लोकप्रिय गीतों में से एक था। हमारे साथ एक श्रोता जुड़ने वाले हैं तो पहले मैं उनको ले लेती हूँ कॉल पर। हेलो हेलो हेलो हेलो, वो जुड़े तो थे लेकिन लगता है किसी कारणवश उनका कॉल ड्रॉप किया है, तो कोई बात नहीं, हम उनको इस गीत के सुनने के बाद आपको सुनवा देंगे, उनसे बात करवा देंगे।

0: जी हाँ, बप्पी दा ने अपने संगीत निर्देशन में एक से एक बेहतरीन कंपोजिशन की। उन्होंने, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी गीतों की नाम लिया था इस गाने को सुनवाने से पहले। इसके अलावा उनका शराबी फिल्म का गाना, फिर जूबी जूबी जूबी अलीशा चिनाई के साथ डांस डांस में प्रकाश मेहरा और बप्पी लहरी के संगीत से इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि 1982 में फिल्म नमक हलाल में पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। इसके अलावा रात बाकी, थोड़ी सी जो पी, आज रपट जाइयो, जवान जाने मन जैसी हिट फिल्में दी उन्होंने। और दो साल बाद शराबी के लिए जो सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी उन्होंने जीता, जबकि किशोर कुमार ने मंजिलें हैं अपनी जगह के लिए पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता। एक पत्रकार लिखती हैं कि उषा उत्थप और बप्पी लहरी ने मिलकर जो जादू बिखेरा वो उनके व्यक्तित्व का कमाल था, और दो सशक्त आवाज़ों ने मिलकर के एक शैली में बंधने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल दोस्तों, भारतीय संगीत के डिस्को किंग और पॉप क्वीन के संगम ने न केवल 8 से 80 वर्ष की आयु के भारतीय दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों को और उनके दिलों को छू लिया। मुंबई स्थित एक इवेंट मैनेजर कहती हैं कि इस जोड़ी के जोशीले लय ने दुनिया भर के कई आयोजनों में जादू बिखेर दिया था। बातें और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दोस्त, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? राजकुमार टाटिया जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा लग जी, क्या अच्छा लग रहा है?
1: मिशन दा का, मिशन चक्रवर्ती के मैं फैन था, मजा अभी भी हूँ। मतलब आपने उनका नाम लिया तो मुझे मजबूर हो गया मैं, तो उनके फिल्म के जो डिस्को डांसर है जैसा फिल्म के मतलब गाने मतलब अच्छे लगे मेरे को, बहुत अच्छे लगते हैं
0: जी। तो राजकुमार जी, और क्या कहना चाहते हैं बताइए।
1: बस यही कहना चाहता हूँ कि तो आप जो अभी जो गाने सुना रहे हैं संगीतकारों के, तो सब संगीतकारों की मतलब उनके सब गाने सुना रहे हैं
0: जी।
1: आपको धन्यवाद देता हूँ मेरी आश्रम की तरफ से
0: जी। शुक्रिया राजकुमार जी। तो हमारे साथ राजकुमार टाटिया जी जुड़े और उन्होंने कहा कि वो मिथुन दा के बहुत बड़े फैन हैं, और बप्पी लहरी ने बहुत सारी मिथुन दा की फिल्मों में गाने उन्होंने बनाए हैं और उषा उत्थप ने भी आवाज़ दी है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़े इससे पहले आपको मैं उषा उत्थप की आवाज़ में एक गीत सुनवाना चाहूँगी, फिल्म सात खून माफ का।

अंतिम गीत ही मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि बैक टू बैक दो गाने सुनवाने का समय नहीं है। मैं आऊँगी फिर 5 तारीख को, जी हाँ 5 तारीख को छायालोक में फिर आने वाली हूँ मैं। और कार्यक्रम किस पर पेश करूँगी और क्या सुनवाऊँगी ये तो थोड़ा सा राज रहने दो। तो बस चलते चलते FM रेनबो 107

अब आपसे इजाज़त चाहती है। मुलाकात 5 तारीख को होने वाली है, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी जिंदगी है। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।

0: तुम राजकुमारी हो जानकी, तुम्हारी जगह महलों में।
1: मेरा महल तो वही है जहां मेरे राघव है। आपकी परछाई आपका साथ छोड़ सकती है, पर आपकी जानकी नहीं।

गीतांजलि पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: अतकुन शुंडेन शना ये राग बिलाश खानी टोली उस्ताद अली अहमद हुसैनेर परिवेशनाय। बंधुरा आपनारा शुनछेन शास्त्रीय संगीतेर अनुष्ठान प्रभाती शुधुमात्र 107 FM रेनबो।
1: गाने बाजुक मोनेर रेडियो शुनछो 107 FM रेनबो सात सुरे सारा दिन सात सुरे सारा दिन।
0: এখন শুনবেন সেতারে রাগ ভাটিয়ার শিল্পী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবেশনায়।